0: क्या यार आवाज, बल्ले बल्ले बल्ले, जी करदा सुनी जाओ यार। जो मिठास है, सुरां जिहड़ियां लाईआं, मुरकियां जिहड़ियां लाईआं यार, साबर कोटी साहब मैं कहना दिल ही जित लिया। 4552 हैलो।
1: हैलो,
0: हाँ जी,
1: हैलो नवी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सत
0: श्री अकाल जी।
1: हाँ जी, मैनू ना फोन चाहिए, क्रिसमस लाइट कोई लगांदा होवे।
0: क्रिसमस लाइटा, हाँ जी, दे देने जी।
1: हाँ जी, दसो।
0: क्रिसमस ता दूर है जी, पहला याद कर ली क्रिसमस।
1: हाँ, हाँ जी, और फिर विंटर टाइम आंदे नहीं।
0: हाँ नहीं, वधिया गल है, हुण कर लेना चाहिए काम। नंबर है जी 416।
1: हाँ जी, ओके।
0: 356।
1: 356।
0: 48।
1: 4870। 7-0, ओके, थैंक यू बेटा।
0: कोई गल नहीं जी, नो प्रॉब्लम। सो जरूर, एंड किसी नु भी कोई इलेक्ट्रिकल काम दी लोड है तो 416-356-4870 ते सारे कॉल कर सकते हैं। ग्रोसरी करनी है, फ्रेश फूड सेंटर 12570 कैनेडी रोड, कैनेडी ते डूगल दे कॉर्नर ते, कैनेडी ते मेफिल्ड दे बिल्कुल नाल। फ्रेश फूड सेंटर ते एक बार तुसी जरूर पहुंचना। हार्डवुड जाइंट, थोनू हार्डवुड लैमिनेट वाइनल टाइला कोई भी फ्लोरिंग का समान चाहिए, हार्डवुड जाइंट टोरब्रमैन स्टील्स दे कोर्नर ते। ते मैं कहना क्या सर्विस है, क्या वरायटी है, तुसी देख के कहोगे आ भी लै ली, वह भी लै लीए। एक ना सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते जरूर पहुंचना। सिंपली इंडियन, सिंपली द बेस्ट। सिंपली इंडियन ते जाओ, अपने मनपसंद का खाना पीना खाओ। इन्होंने एक तो जलेबी एक पाउंड नाल एक पाउंड फ्री लाई है, मोहीटोज ते होर बहुत सारे ड्रिंक बाय वन गिट वन फ्री लाए ने। आने वाली दिवाली ते बहुत वड्डे टेंट मिठाइया 150 तो वध गिव अवेज, लाइव डीजे, पंजाबी लहरा लाइव वन लोकेशन होगा। सो जरूर तुसी याद रखो, सिंपली इंडियन 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल, गार्डन ब्रुक कैसलमोर, 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट, मिसागा फाइनेंशियल, एंड 15 फेंडर वे, बवेड एंड शिंक्यूजी। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट थोड़े लिए हाजिर है। प्रदीपा जी भी थोड़े लिए अवेलेबल, जो तुम फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर की कोई रिपेयर करवानी है, कोई अपलायंसिज थोड़े पुराने ने चंगी तरह चल नहीं रहे, अपलायंसिज नूं भज्जण ला देंगे। 6476223203 6476223203। एंड पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाजी, नवी रूफ लगन वाली है, रूफ की रिपेयर होने वाली है, पैशन रूफिंग नूं तुसीं फोन करना है। गुरलाल भाई जी हुणे फुली इंश्योर्ड कंपनी है, बड़ा खूबसूरत काम करते ने, एंड नाल वारंटी भी थोड़ा मिल रही है। सो पैशन रूफिंग 647-919-9413 नंबर है, 647-919-9413 नंबर है। गाना लाइए दो बोल यार, निर्वैर पन्नू की नवी एल्बम चों।

सिद्धू मूसे वाली गलबात हो रही है बई। देखो कि वैबसाइटा जिवें मैं तुहानूं कहा कि हैंग हो गई, टिकटां जिन्हां ने लैनिया सी लै लिया, जिहड़े सलाहवां कर रहे सी वो सलाहवां करते रह गए, कई लाइन च लग गए। सो 905-673-3337 मैनूं तुसीं रेडियो उड़ान मीडिया से मैनूं तुसीं डीएम कर लिओ, मैसेज कर लिओ, तो थानू मैं दसूँगा कि मेरे को एक दो सीट्स बचिया ने, मैं थोड़ी सेविंग करवावगा रेडियो उड़ान वालों, मैं थोड़ी सेविंग जरूर करवाऊँगा। तुसीं मैनूं कॉल कर लिओ 437-870-0001। बहुत सारी थोड़ी सेविंग करा देनी, मैं चाहना कि रेडियो डाउन का तुम मैं रैफरेंस दे दियो, तो रेडियो डाउन सुनने वाले जो भी स्रोते उन्होंने मैं सेविंग करवाऊंगा। लिमिटेड जी टिकटा ने, बस दो तीन टिकट रह गई, बस कॉल कर लो 437-870-0001। टिकटा भी VIP ने। सो सिद्धू मूसेवाल की गलबात हुई है, तो मूसेवाल का एक सॉन्ग सुनिए, उस तो बाद जल्दी मुड़ांगे फिर गलबात करांगे। 905-673-3337 जुड़े रेडियो प्रोग्राम उड़ान के नाल AM 530 तो प्रभ संधु नाल।

रखो 905 805 3000 905 805 3000 2915 अर्जेंटिया रोड मिसिसागा रेडियो डान दा रेफरेंस दियो डिलीवरी बिल्कुल फ्री इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री ड्रीम होम अप्लायंसेस

0: शराब ते अमीर विरसे दी पुक्कलचों यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
1: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
0: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
2: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
1: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: पीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहबर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए nbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: @BridgeMohan. Contact us at bridgemohan.com.
1: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बंदा है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 एंड 10
2: ऑथराइज्ड एंड पेड फॉर बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल

0: Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8404-84-01।
2: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकते हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिए अज ही कॉल करो 416-518-3200।
3: अपना ट्रक वेचन लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
4: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221।
5: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉट सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
6: ਭੈਣ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
7: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ, ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ।
1: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਵੇਰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699
8: निर्बल
9: बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
10: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली, पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
11: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
12: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
5: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन।
6: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, रिस्पांसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
5: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
6: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years experience, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।

0: 215.
1: तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
2: आज खुश तो बात होगी
3: ओ ता होना ही है जब तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे तई नगदा बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी आला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
4: चल क्या रहे हो यहां पर?
3: ओ पाजी

साथ हो तो कुछ बात ही अलग होती है, आपकी जान आपके साथ हो तो कुछ जिंदगी का मजा ही अलग होता है। भाई जान आज तो पहन गया प्यार दिया पींगा, हाँ अज फ्राइडे है, अज 2:30-3 बजे 4 बजे काम छड़ देना, बहुते वीर ने हैं ते घरे जान लगे, बकरी शकरी लै जाओ भाई जड़े खाने वाले शकीन, बकरा लै जाओ, मुर्गा लै जाओ, मुर्गी लै जाओ। अच्छा किदा पहचान होंगी मुर्गे मुर्गे की, चमकीला साहब एक मिनट वेट तो करो, असं हम कि पहचान करिए, आप लैन चाहिए चिकन उतों, उन्होंने कहते भाई चिकन दे दे, हम सानू की पता मुर्गी है या मुर्गा है, असं उन्होंने कही भाई बकरा दे दे, सानू की पता बकरी है, असं की करिए हम कि बंदे की पछाण करिए यार, ये तो पछाण करना औखा है कम, ये दुकानदार को पता होगा भी की दे रहा मुर्गी दे रहे या मुर्गा दे रहे, अपन तो ये बारे पता नहीं पूरा, पर गल यह है कि ये बारे पहचान किमें की जा सकती, मैनू ये बारे बिल्कुल नहीं पता, तो अज फिर कई पता होंगे जलों खरीदा जाते हैं मीट शीट भाई किमें सिस्टम करना किमें नहीं करना, पर चलो अज फ्राइडे है, अज फिर चमकीला साहब चलूगा, तो फिर नाल जो मैं दस दिता तुम अगे पैर गई प्यार दियाँ।

17 अक्टूबर ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਾ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ। रेडियो का समा समाप्त है, 2 मिनट हो रहा मेरे को, तुम सुनो कवाली तो मैं आग्या दौ जेडे भी सजना ने आना है इस कवाली नाइट के याद करी होगी कवाली इन्हों का मैं तुम्हारा ऑन एयर प्रोमिस करता वीर मेरे हो जे आ गए वो कहे हरजीत जी ये बंदे दोबारा करो तुम लैके आ रहे हैं 6474481000 647 448 1000।

0: This is Paul Evanoff, President and CEO of Evanoff Communications. Thanksgiving reminds us to be grateful for our family and friends, and for all the gifts, big and small, that life gives us. On behalf of myself, my family, and all of us at Evanoff Communications, I want to take a moment to say thank you to the dedicated people who make this radio station what it is. Thank you for your hard work, your commitment, and your passion. To our listeners, thank you for allowing us into your homes, your cars, and your lives. And to our advertisers and business partners, thank you for your trust and your continued support. This Thanksgiving, may we all find time to appreciate the people around us and the many blessings we sometimes take for granted. And if we are able, perhaps we can share our time, our kindness, or even a place at our Thanksgiving table with someone who might be in need. From my family and from everyone at Evanoff Communications, I wish you a very happy, peaceful, and heartfelt Thanksgiving.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: हेलो
3: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
3: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
3: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
2: मिल जानगियां बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
3: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
4: 32-55-80
5: ते 98
4: ए की गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
5: ओ काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: सुनो जी, भूख लगी आ। पिज़्ज़ा डिपो ले आया 4 नवे देसी फ्लेवर्स। चटपटा अचारी, मक्खन वर्गा मक्खनी, तड़के वाला हाका ते अग लौंदा शेजवान। कोई भी नवा फ्लेवर लो, लार्ज मिलेगा मीडियम दी कीमत ते। कोड वर्तो 9711। लिमिटेड टाइम ओनली, सिर्फ अक्टूबर 30 तक। पिज़्ज़ा डिपो, स्वाद नवा, प्यार पुराना।